के घर वही उजड़ते देखा है। अरे बनती नहीं है बात झगड़े से कभी यारो, बनते बनते बात को बिगड़ते देखा है। अरे हम पंछी एक डाल के

0: अफीम की गोलियां फेंक दी।
1: लेकिन वो क्या जाने अफीम का कितना गहरा असर हो चुका है।

भेद खोजी, बोले पपिहरा भेद खोले, तेरा मेरा मेरा तेरा हो भेद खोले, तेरा मेरा तेरा जी मैं का करूँ राम। रात को जी है रात को जी चमके चंदा, तेरे बिन पाए नहीं चैन ये बंदा जी मैं।

तड़पाने में, पियो पिलाओ जी भर के। आए हो जब मैखाने में, पियो ना थोड़ी सी।

0: सदानंद।
1: मैं अकेला रह गया चाचा जी, दीदी चली गई अपने घर, मैं अकेला रह गया।
0: अकेला मैं जो हूं तेरा बेटा, तूने एक सन्यासी को संसारी बना दिया, अब मैं तुझे पढ़ाऊंगा, तेरे लिए मैं सब कुछ करूंगा।
1: चाचा जी।
0: बेटा तेरा भविष्य बड़ा उज्जवल है, तेरे हाथों से देश के बड़े बड़े कार्य होने वाले हैं।